कहाओ। जानन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरियाओ। सिर सिर डिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पहु करया। उड़े उड़िया वैसा कोसा तिस पाछ बचरे छरिया।

खाना। जो सेवा है जो सेवा है तुझ जी जा नानक तिन कुरबाना। हर त्या वह है हर

रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छह छह सके न कोई। एक बार जिंत में संभारा, काल पास देता हूँ भरा, जिनर नाम त्यारू कहा। दर्द दुष्ट दुख ते रहा, कड़क कीत मैं शरण तिहारी, आप हस दिहो बारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुव्राता, खिल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छैं करता। श्री अस तो जो जापै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावे सोई, दुख नत सब आपत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जा

जाए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु की साजनी बाजी सात संगत जी सतगुरां जी ने महान कृपा कीती है। शामा दे दीवाना विच आप जी संगति रूप विच हाजरियां भर रहे हो और अपने जीवन दे समय नूं सफलियां कर रहे हो। बिन भागां सतसंग ना लभे, बिन संगत महल भरी दे जीओ। बड़भागी हुंदे ने वो जो गुरु दी शरण विच आउंदे ने, गुरु दे नाल प्यार रखदे होए गुरु वास्ते समां कढ़दे ने, और जो गुरु दे वल आउंदे ने गुरु दे वल मुख करदे ने, गुरु नाल प्यार करदे ने, गुरु भी उन्हां गुरसिखां दे वल अपनी नज़र करदे ने। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेतै। गुरु भी फिर अपने प्यारियां ते तरस करदे ने, उन्हां दे सिर ते हथ रखदे ने। सतगुरां ने महान कृपा कीती है, धन धन बाबा बुढ़ा जी महान तपस्वी महान गुरसिख, उन्हां दी याद विच हर साल संगतां इस गुरु घर विखे दीवान सजदे ने और संगतां चढ़दी कला विच उन्हां दे नाम बाणी नाल जुड़दियां ने। ते इस साल भी सतगुरां ने कृपा कीती है, दासरियां दी सेवा लगी है ते बाकी सारी वीक शामा दे दीवान सजणे ने संडे तक। ते कल ही श्री अमृतसर साहब तो असी तुहाडे दर्शन करन लई पुज्जे हाँ, वध चढ़ के हाजरियां भरनियां ने। सारिआं नूं बेनती है जिथे आप जुड़ना है उत्थे होरनां नूं भी जोड़ियो। गुरसिख दा फर्ज है कि गुरु दे नाल आप जुड़ना है ते होरनां नूं भी प्रेरना है। ये सारी वीक असी वध तों वध लाहा लैणा है। आओ सतगुरां दी बख्शी असीस फतेह दी सांझ पाओ, रसना पवित्र करो प्यार विच। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की।

आख गोपीता गोविंद आख ईश्वर आख सिद्धु आख किते किते बुद्धु आख दानवे आख देव आख सुर नर मंजन सेव किते आख आखण पाहे किते कहे कहे उठड़ जाहे इते किते और ग्रहिता आख कह के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जान साचा सोए जे कु आखे बोल बिगाड़ू तल की असर गावारा गावारू सो दर के हासु कर के हाजत बैसर बिस्माले वाजी नाद अनेका संखा की वावन हारे की राग परी सियो कहियन की गावन हारे गावे है तो नो पावन बाणी बैसंत्र गावे राजा धर्म दुआरे गावे है चित गुप्त लिख जाना है लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन चदस वारी गावे दसन बैठे देवते आदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनी मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारी गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तनो गावे जोध पावन रते तेरे भगत रसाले और कीती कावन से मैं चितने आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सत्साहिब साचा साची नाई है पियो सी जायन जासी रचना जिनन चाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनु पाई कर कर वेखा कीता अपना जब तिस्ती बड़े आई जो तस्पावे सोई करसी हुक्म करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेभूत किंथा काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कड़कड़ बज नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित सिद्ध अवरा साध संजोग वियोग दो अर्थ लावे लिखी आवे भाग आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई चेले प्रबण एक संसारी एक भंडारी कलाई दी बाण जित भावे तिव चलावे जिव हुआ फुरमाण ओह वेख ओना नदर में आवै बहुता एह विडाड़ू आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लो ले भंडारू जो किच पाया सो एका बारू कर कर वेख सृजनहारू नानक सच्चे की साची कार आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होहे लख हुवै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस त्राह पत पवड़िया चढ़िया अकीस सुन गल्ला आकाश कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुप है न जोर जोर न मंगण देर न जोर जोर न जीवन मरण है जोर जो न राज माल मन सोर जो न सुति ज्ञान विचार जो न जुगति छुट्टा संसार जिस हथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पावन पानी अग्नि पातालू तिस में धरती थाप रखी तमसालू तिस में जीव युक्त के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचारू सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवाण नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जाप जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म किति पावन पाणी वैसंत्र किति कान महेश किति ब्रह्मे घाट घड़िया है रूप रंग के वेस किति अकर्म भूमि में किते किते धूप देस किते इंद चंद सुर किते किते मंडल देस केते सिद्ध बदनाथ केते केते देवी बेस केते देव दान मन केते केते रतन सुमंद केते अकाणी केते बाणी केते पात लेंद केते सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड उत्थान आल विनोद कोड आनंद
ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪਉ ਤਿੱਥੇ ਘੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪਉ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛਾ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦਉ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਰਤ ਦਉ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਤ ਨਿਵਹਿ ਰਾਮ ਰਹੇ ਆਭਾਰ ਪੂਰੇ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੂ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦ ਨਿਹਾਲੂ ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤੈ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤੈ।

धीर सुनियार अहरण मत वेद थी यार पाव खलागन तब ताऊ पांडा पाव मृत तित टालू कड़िए शब्द सची टकसालू जिन को नदर कर्म तनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दई दाई दया खेल सगल जगत

है सर्व आत्म है, आत्म आत्म बस है जस के जस, आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात चंद। नमो सूरज सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पोज पोजे, नमो बान पाने, नमो कलह करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्र नाद विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके, नमो आशासे, नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी, नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे, एक अक्षरी छंद अजाय लाय अपय अभय अपू अजू अनास अकाशु अगंज पंज लख पख काल दयाल अलेख भेख नाम काम गाह टह नाथिप माथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म परम गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद। नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी स्वधर्मंग विभूते सदा सचदानंदतंग प्रणासी, करिमल कनिंदा समस्त निवासी अजायब भूते गजायब गनीमे, हरियं करियं करिमल रहीमे, चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुजियं प्रभु सुभं सर्वदा सर्व जुगते, दोकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपहंगंग विभूते,

हरे गुंजत गूढ़ गजानक सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनाए नहीं जात बिचारे श्री पातशाही भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दानो सो संजम नेम अनेक सिख है वेद पुराणक देव कुरान जमीन जबान सबान के पिख है पावन आहार जति जतारु सब सुबचार हजार क देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखा है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाहा सुशासन दुर्जान दलांगे भारी गमान पर मन मैं कर परपत पंख हले न हलांगे तोर अरीर मरोर मुवासिन माति मतंगण मान मलांगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलांगे बीर पार बड़े बरे यार बचार है सार की तार पछैया तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री साहब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव निंदन सातर भूत भगवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बार जा तुन पापन की बह पुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्तर सबै अवलोक चपाएंगे मानव इंद्र गजिंद्र नाद पौ जौन तरलोक को राज करांगे कोट स्नान कजात गदान अनेक स्वम बरसात बरांगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपा तंत्र पश जम पास परांगे

कहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पुछा हा कोशिश नवायक को भूतान को पूजत है पासु को मृतान को पूजन तायो को भूतान को पूजत है पासु को मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पासु को मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबे बात बेनती चौपाई अमरी करोहा दैरछा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबत मुकाबो आप हाथ दय मोह बचाव हो सुखी बस मोरो परिवार आऊ सेवक सिख सबाय करतारा मोर अच्छा निज कर दया करिया ऐसा बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा उत्तम है छाड़ कोई अवरण त्याहू जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चौन सत्र हमारी मारिया है आप हाथ है मुझे अबरियाई मरण काल का त्रात मरिया ओ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त जो करे हो रचा राख ले हो मह रखन हारी साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तमह परिचा तुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा भव तरंग काल पाए शिवजू अवतरंग काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार हता हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतो जचन उपजायो आदन ते कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जनी आप सुभारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट का फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाणा घट घट के पढ़ पढ़ की जाना जबद कर करा करतारा प्रजा तर तब देह पारा जब या कर करत हो कब हो तुम मिलत देह तर सब हो जिते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत नाल बजानत भेद भेद अर आलम।

कहूँ से मठ पाए शंकर का ठाव शिवरी चट दिखाई अचंपव आजुगाद स्वरूप से जंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग हरो दठ जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस्तो जिता सरणी परे तिनके दुख दुख तुह मरे।

दुख दुख दिल उपचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता किल बिक सकल देह को हरता दुर दुखियन को छ करता श्री अस्तोज भाई दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वांछत फल पावे सोई दुख न बेअपत कोई अड़ेल सुनै गुंग जो जाहे सो रस न पावई इसना मूल चितला चतरता आवई दुख दर्द भाव निकट नंग तिर नर के रह हो जो जाकी एक बार चाओ पाई को कह चाओ पाई संबत सत्रह सहस पुण जाय अर्ध सहस पुण तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारह तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया

जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों पावा तिवा बुलैनी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे गुरबाणी कह सेवक जन माना

सब किश तेरे वास तेरा कर भला तेरे कारण आनंद वधाई तुद कर मां महता ते जपना आप जर सर्व कला पार पूर दिसे जत कता ना।